0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे।
3: 647-888-6000।
2: बाबा जी आकड़ा मंत्र है
3: बच्चा, ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी,
3: बाबे दा घर भी एना नहीं बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते ले परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 647-888-6000 और visit.com।
5: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
6: क्यों नहीं चन करे, कहे ता सिर तो पैर तक सोने च बढ़ा दें।
5: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट, रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनियां, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
6: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां वी तां बिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां उनू भी ले दांगे।
5: तो मेरे जीजे ली घड़ी,
6: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
5: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 एयर रोड माल्टन इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 9056714290।
7: शादियां वे हवले मौके आंदे उत्ते पता लगदा नहीं सच्ची काम काज दा।
8: ओ जी इनफिनिटी टेंट सेंटर कोल वालियां दी हुंदियां ता तैयारियां दी कोई टेंशन ही नहीं।
9: इना कोल टेंट, टेबल, चेयर, एलईडी डांस फ्लोर, फ्लावर एंड डेकोरेशंस, 360 डिग्री कैमरा, सब कुछ मिलेगा। इना कोल छोटे वड्डे हरेक फंक्शन लई अट्रैक्टिव टेंट्स अवेलेबल ने।
8: बुकिंग लई कॉल करो इनफिनिटी टेंट सेंटर कोल 6477080079 6477080079।
10: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साउथ को अपना साथी बनाओ।

0: राजधानी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाउणा चाहुंदे हो तां इह सूचना तुहाडे लई है। संपर्क करो अजैब सिंह सहोता जो मिल्टन कैलडन ब्रैम्पटन माल्टन मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो। 7 days कम। वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 416-561-8882-416-561-8882।
3: रिट्स फर्नीचर दा मैसेज जरा ध्यान नाल सुनो।

0: महल।
1: ओ यार ना आता दस दे।
0: स्वीट महल स्वीट महल स्वीट महल।
2: टॉप क्वालिटी आला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना 100 to 1000 बंदिया दी केटरिंग ली पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते तीजे केटरिंग ट्रक विच स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-609

पाओगी ये बात याद करोगी जब दूर चली जाओगी बहकने दे मन को और कितना समझाओगी तड़पोगी जब रेगिस्तान में प्यास लेकर आओगी कहाँ इतनी प्यास लेकर जाओगी पीछे मुड़कर देखो तुम।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320
1: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है।
2: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो।
1: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार देख रहा हूँ।

क्या हमारे किस्मत में है इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है।

बैठे चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: लावल आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं आनी। कुछ तेरिया ने, कुछ मेरिया ने। तेरा मिलना, तेरा विछड़ना, तू कदे परछावे तो नेड़े, तू कदे सब तो दूर। तेरा हासा, तेरा रोना, ते कदे कदे एकदम चुप होना। सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नूं जीना सिखिया, निक्कियां चीजां च खुश होना सिखिया, उच्ची उच्ची हसना सिखिया, दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया। हां खुशी है मैनू तो जिंदगी किदां जीनी है ये दसिया, पर अफसोस तेरे बिना किदां जीनी है किते ये नहीं दसिया। गल हुण संघनी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है, दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है। ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या। विद माई फर्स्ट ईपी एडिक्शन।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: तू अपना फर्ज अदा कर गया, असी अपना फर्ज निभावांगे, तेरी रीत नू लैके चलांगे, तेरे वांगू एंड करावांगे।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

0: बस हो तुम मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे
3: 6478886000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो विवाह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना ने वसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते लई भरोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 6478886000 और विजिट nrimb.com।
5: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
6: क्यों नहीं चन करे, कहे ता सिर तो पैर तक सोने च बढ़ा देया।
5: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट, रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनियां, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
6: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां वी तां बिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
5: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
6: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
5: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 रोड मालचंद इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 9056714290।
7: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए,
8: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
7: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस सामग्री नाल तैयार ताजिया मिठाइयां अते खाने,
9: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
10: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-619-9191।
11: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
12: HK Movers,
11: local and long distance,
13: we also ship cars,
11: Kailer Transport and moving services.
12: For service with a smile, give us a call.
11: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
12: 416-524-6704.
11: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
13: Long distance moving specialist,
11: HK Movers.
14: HK Movers.
15: Aopita. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਟੀਮ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਉ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416-716-7653 ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.teammanjeet.ca।
16: ਰਿਟਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।

तेरा न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: आ कौन आ बिना गल्लो नहीं अखा जी चाड़ी फिर दे

पंजाबी ओद रंग या गुलाबी उन्हें अख मटकाई मुंडे हो गए शराबी। जुत्ती पैर जी पंजाबी ओद रंग या गुलाबी उन्हें

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट CA।
2: पील रेनोवेशन दा पैगाम। अगर तुसी अपने घर जा ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहुंदे हो, सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम पाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउण लई चेती रखो। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिल्कुल फ्री। एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउण लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 6476481847। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन। अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाउणा चाहुंदे हो तां इह सूचना तुहाडे लई है। संपर्क करो अजैब सिंह सहोता जो मिल्टन कैलडन ब्रैम्पटन माल्टन मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो 7 days कम। वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 4165618882 4165618882।
3: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ अपने नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ ताजियां स्वादलियां मठियाईयां अते जायकेदार

0: केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांभर, उत्पम, डिजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 9057990045 0575। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
3: साडा पटोला ते साथे ओला।
4: जे तुसी भी हो तरह तरह दे पिज़्ज़े दे शौकीन ता आओ पिज़्ज़ा मशीन।
5: विश्वास प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवावां दा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजिहे कमां वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग, नोटराइजेशन, एफिडेविट्स, डेक्लेरेशन जां स्पॉन्सरशिप लेटर्स, पावर ऑफ अटर्नीज, बच्चियां लई कंसेंट लेटर्स। बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 9052328700। अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस, ठीक सलाह बल्ले बल्ले।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 9057990045 0575। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक।
6: मेरी हाथ मिनो नो चूड़िया है।
7: आज ते जान नालो ज्यादा तू सोनी लग रही है।
8: तुसी भी आओ अपनी खूबसूरती नु सजाओ स्कार प्रो टेक्सटाइल नाल।
7: पाओ सूट, साड़ीज, लहंगा, ज्वेलरी अते फैशन एक्सेसरीज,
8: ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड मच मच मोर।
7: आज ही पहुँचो
8: स्कार प्रो टेक्सटाइल 2659 एजलिंगटन एवेन्यू एट एलबीएन। कॉल 4167420042400010।
2: की तुसी अपने घर विचले आईपीटीवी बॉक्स दे पूरे विश्व भर दे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, तमिल, पाकिस्तानी चैनल्स, फिल्मां, सीरियल, ड्रामे, न्यूज़, बच्चों दे चैनल अनबीटेबल कीमत दे देखना चाहुंदे हो तां भारी बचत लई अज ही कॉल करो 6475545859 5548। नोट करो कि जेकर तुसी अपने घर जां बिजनेस अदारें दे विच प्रोफेशनल पेंटर द्वारा पेंट करवाना चाहुंदे हो तां चेते रखो गिल हाउस पेंटिंग, जो तुहाडे घर दे विच पेंट तों पहलां हर एक कोना प्रॉपर तरीके नाल कवर करदे हन। वाजब रेट अते समय सिर काम करवाउण लई अते एस्टीमेट बिल्कुल फ्री लैण लई कॉल करो कमल गिल 6478339960 6478335960 गिल हाउस पेंटिंग। पिछले 20 सालां तों कस्टम वुडवर्किंग दीआं प्रोफेशनल सेवावां प्रोवाइड कर रहा नाम मेपल वन किचन एंड बाथ इंक गूगल ते 5 स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी वुडवर्किंग कंपनी द्वारा। अगर तुसी अपने घर दी हाई एंड किचन कैबिनेट, क्लोजेट, बार, टीवी यूनिट जां डॉक्टर ऑफिस, डेंटल ऑफिस, ऑप्टिकल स्टोर दी वुडवर्किंग दा काम अपने बजट अते समय सिर करवाउणा चाहुंदे हो तां चेते रखो मेपल वन किचन एंड बाथ इंक 173 एडवांस बुलेवार्ड यूनिट 34 ब्रैम्पटन और 9054580075 9054580075। मेपल वन किचन एंड बाथ इंक लंबे समय तो कम्युनिटी विच परख्या होया नाम। एनी टाइम होम रेनोवेशन सिटी तो बकायदा परमिट लेके तुसी अपने घर दी लीगल बेसमेंट तैयार करोनी है या वाशरूम, प्लम्बिंग, किसी भी तरह दी रेनोवेशन दे कमां नू समय ते करवाउण लई चेते रखो एनी टाइम होम रेनोवेशन। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 6747271 एनी टाइम होम रेनोवेशन।
9: पंजाबी दिल अंग्रेजी वाइब CJMR इज बैक अलाइव। CJMR 1320 आ गया होए छा गया होए।
10: सुन के भाई
1: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ।
10: ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕੀਦਾ। ਕਰਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਰਹਿਣਗੇ 905-813-1320-9058-1313 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਰ ਲਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
11: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ।
10: ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ?
11: ਚੰਗਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
12: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕੀਦਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
10: ਖੇਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਖੇਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ